एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

0: मेहंदी की रात, हुसैन वली, शशि का मुहूर्त. वेल अप नेक्स्ट, इट्स एपिसोड 2 ऑफ रेनबो ब्रिज, टेकिंग अप द न्यूज एट 12 o'clock विद शोना टेरी नायडू. दैट्स इट फ्रॉम मी, कृष्ण प्रिया दास. टुडे इफ यू वांट दोस टिकट्स फॉर दिस वीकेंड, ग्रेट स्टफ. लिसन, थ्रू आउट द वीक लोटस एफएम इज गिविंग टिकट्स अवे फॉर डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग. इफ यू'd लाइक टू विन, कीप इट लॉक्ड इन एंड स्टे ट्यून्ड. From me, Krishna Priyadasa, thank you very much for giving me your valuable time, as always. And thank you so much for lending me your ears. See you tomorrow. Ciao.
1: Having mental or physical trauma can cause great stress.